0: कबू का पिए रही था, कबू पेंसिल ले रही था, कबू झोले फटाका आजी था, का कना हो बाबा के ओस्ट बाटिन गटिलो ठाउँ से झोला आनल से तो लड़का सामान निहरे।
1: ओहो ये बुढ़ालिक में का हुई थी, जरम भर भर बराई थी रहत।
0: का हुई कबू लड़का कभी हेरा कई था, कबू पेंसिल हेरा कई था, कबू झोले फटा कई था, बढ़िया ठाउँ से झोला लाना नहीं चिकठो।
1: अरे कहाँ से नानम था,
0: कहाँ से लन बो, वो तो कहाँ हो टीकापुर में रलक रख गई झोला उद्योग में से, वहाँ झिंगला दीदी कटरा सुगर झोला आनल बाटी, ना कबू लड़का कहाँ पिए रही थी, ना कबू पेंसिल हेरे थी, ना झोला फाटल हुई थी, कहिए आनल झोला दस का टस बाटिन, ये बुढ़क ढंग कबू पसल छान कर झोला नहीं आना से आकट हुई।
1: लिया लिया मैं अब नहीं जाइबू रख गई झोला उद्योग में, रख गई झोला उद्योग, झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत, जैसे स्कूल बैग, कैरिंग बैग, फाइल बैग, लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए, पुरान बिगड़ा झोला है मरमत करा जाए, एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी।
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रतगैया, संपर्क मोबाइल नंबर 98484-22373।
3: पेट संबंधी संपूर्ण समस्या को उपचार तत्काल पोलिक्लिनिक प्रणाली टीकापुर में,
4: पेट सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्याको उपचार आधुनिक औषधि र आयुर्वेदिक औषधि द्वारा गरिने,
3: समस्याहरू किडनी र मृगौलाको पत्थरी तथा अन्य समस्याहरू,
4: महिनाको महिनावारी गडबडीको समस्या,
3: पाठीघर सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्या,
4: पेट सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्या,
3: गर्भवती महिलाको गर्भको अवस्थाको जाँच तथा परामर्श सेवा,
4: ईसीजी सेवा,
3: डिजिटल एक्सरे सेवा
4: र प्रयोगशाला ल्याब सेवा।
3: फोन नम्बर 98484-27359 र 98-48-72-59। सत्कार पोलिक्लिनिक प्राली गुम्बा रोड टीकापुर जालपा देवी मन्दिर नजिकै।
5: ए भन्दै सबै कुरा पाउने रहेछ, लु भन् त भाउ के पाउँछ त्यहाँ?
6: ए त्यहाँ त्यहाँ त नलका मोटर, ढक तराजु, घरमा लाउने कलर सबै पाइन्छ।
7: ए एभ्रिलाको कुरा गरेको हो, त्यो त मलाई पनि थाहा छ, त्यहाँ त ग्यास, ग्यास चुला, नलकाका सामान, किला काँटा सबै पाइन्छ नि।
8: त्यति मात्र होइन, त्यहाँ त जस्मिन पेन्ट, घर वायरिङका लागि इलेक्ट्रिकका सामानहरू पनि पाइन्छ।
5: भन्दै सबै कुरा पाउने रहेछ।
3: टिकापुरमा रहेको एकमात्र नापतोल सामग्रीको आधिकारिक विक्रेता एभ्रिला ट्रेडर्स।
7: विशेष ढक तराजु, डिजिटल तराजु तथा घर निर्माण र भान्साका लागि चाहिने सम्पूर्ण सामग्रीको लागि सम्झनै पर्ने एकमात्र ठाउँ एभ्रिला ट्रेडर्स,
9: पुरानो ट्रिनिटी स्कुल भएको भवन टिकापुर।
3: प्रोपराइटर पुष्पराज देवकोटा, सम्पर्क फोन नम्बर 98484-48673 र 98-14-68-02-04।
10: विश्रामपछि खोज खबरमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी खबर। कैलालीमा श्रीमानको हत्या गरेको आरोपमा प्रहरले उनकी श्रीमती सहित पाँच जनालाई पक्राउ गरेको छ। लम्किचुवा नगरपालिका वडा नम्बर 4 का 33 वर्षीय दीपक सुनार साउन 22 गते बिहानदेखि जानकी गाउँपालिका वडा नम्बर 9 अमरावती स्थित ससुरालीबाट हराएको भन्दै उनकी श्रीमती यमुना सुनारले प्रहरलाई जानकारी गराएकी थिइन्। प्रहरले खोजतलाश तथा अनुसन्धान गर्ने क्रममा यमुनाले प्रेमी संघको मिलेमतोमा श्रीमानको हत्या गर्ने योजना बनाएको तथ्य खुलेको जनाएको छ। प्रहरीका अनुसार दीपकको हत्या गरी सबकर्णाली नदीमा फालिएको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेको छ। घटनामा संलग्न भएको आरोपमा प्रहरले भदौ 9 गते कैलाली र कञ्चनपुरका विभिन्न स्थानबाट पाँच जनालाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा लम्किचुवा नगरपालिका 10 का 41 वर्षीय दुर्योधन सुवर्णकार, लम्किचुवा 4 के 32 वर्षीय यमुना सुनार, टीकापुर नगरपालिका 3 का 32 वर्षीय राम राजेश महतो, कञ्चनपुर बेलौरी नगरपालिका 9 का 56 वर्षीय वीरेन्द्र राणा र बेलौरी 8 का 32 वर्षीय भीमा राणा रहेका छन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीका अनुसार पक्राउ परेकाहरूलाई कैलाली जिल्ला अदालतबाट म्याद थप गरी घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको छ। खोज खबरमा अब पालो जनआवाजको। स्थानीय पालिकासँग स्रोत कम, नागरिकका आवश्यकता धेरै हुन्छन्। आजको जनआवाजमा हामीले जानकी गाउँपालिकाबाट कस्तो सेवा पाउनु भएको छ भनी केही नागरिकलाई सोधेका छौं।
11: मोदी नाम ज्योतिष चौधरी जानकी सात लटकनिया नहीं नगर प्रहरी काम से ऐसे वैसे काम नहीं करल सेवा सुविधा तो बढ़िया लगा था इसी के टाइम में भी तो समझा के देते हैं।
12: अरुण चौधरी लटकनिया सेवा सुविधा तो अब बढ़िया लागल कह दिए आजकल बढ़िया सब सुविधा बा सब चीज बढ़िया काम हुई थी बा टाइम में मैनेजमेंट बा काम हुई थी बा
13: ना ज्योतिष चौधरी मोटी नगर मजे बा आई वो तो बता देते हैं कैसा हाल गए के कहाँ जना हो कैसे कहला ठीक है काम से व्यवहार में मजा वो कब काल टाली मोली में चल जी थे अली 10-5 मिनट को हो अब यही बोले बोटो अब यही अना अली टाइम लगती या तो वही ठाव जाए पड़त जहाँ वहाँ उकरन की मीटिंग वीटिंग वही कर देखे टाइम टू टाइम अखिस भर हमारी स्वास्थ्य चौकी को अब स्वयंसे भी करके चाहे का महीना अपठारो लागत की अब फिर से विटरन नहीं हुई ना टाइम में दे नहीं पाए थे अब के कर गलतियों में नहीं पटा
14: मेरा नाम गणेश उपाध्याय जाने की एक दुर्गवली गुजर अटोल ठीक है अलीसम सुविधा पाइक भनौ राम अब कुनै प्राविधिक कारणले अथवा हाम्रो कागजात डकुमेन्टहरू नमिलेर नहुनु त्यो अलिकति बेग्लै भिन्नै कुरा भयो हाम्रो प्रक्रिया मिल्या छ कागजात सबै छ हुन्छ भने त्यसो बाधा अवरोध कुनै त्यस्तो छैन अहिलेसम्म समयमै भइरहेछ।
10: यसै जनावसँगै खोज खबर सकियो। अन्त्यमा जाँदा जाँदै खबरका मुख्य शीर्षकहरू फेरि एकपटक रसुवा बाढ़ीमा परेकाहरूको आज बिहानैबाट उद्धार शुरू। बाढ़ीमा परेका 157 जनाको शव भेटियो। प्रधानमन्त्री शाहद्वारा देशवासीको नाममा सम्बोधन। भोडेको सीमा आएको बाढ़ीले टीकापुरमा चिन्ता। रसुवामा काम गर्न गएका दर्जनौ युवाहरू सम्पर्क विहीन। सक्षम हुँदै महिला जनप्रतिनिधि घरयासी काममै सीमित रहेका महिलाहरू आज भोलि विषयवस्तुमा विचार र विमति राख्न सक्षम बन्दै र कानूनी जटिलताका कारण सामुदायिक वनहरू उपभोक्तामुखी बन्न नसकेको वन संरक्षणमा लागेकाहरूको गुनासो। अहिलेलाई खोज खबर यति नै। प्राविधिक मित्र छपिलाल चौधरीलाई धन्यवाद दिँदै अहिलेको खोज खबरबाट म ईश्वर साउद विदा हुन्छु। सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम सुन्दै गर्नुहोला। नमस्कार।

0: पीडी सेवा, डिजिटल भिडियो एक्सरे, ईसीजी सेवा, डिजिटल अत्याधुनिक भारी एक्सरे सेवा, नियमित अटो एनालाइजर से सक्कु रगत जाँच फार्मेसी प्रयोगशाला सेवा, हाट जोड्नी सेवा, टुटल हाट जोड्नी मा प्लास्टर सेवा, ईएनटी सेवा, सुरक्षित मातृत्व सेवा, गर्भवती जाँच सेवा, यौन रोग के परामर्श तथा उपचार सेवा सँग तालिम पाइल स्वास्थ्य कर्मी से क्षयरोग तथा कुष्ठरोग सम्बन्धी सेवा फेले जाए। सम्पर्क सत्कार पोलिक्लिनिक प्राली, गुम्बा रोड, गोलचोक लगह, टिकापुर कैलाली। फोन नम्बर 091-560-095 ओ मोबाइल नम्बर 98-48-42-73-59।
1: समुन्नत समाज का लागि समावेशी आवाज, सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएम 101 मेगाहर्ज।

0: बुका पिएरै ठ कबु पेन्सिलेरै ठ कबु झलै फटाका आजिठ काकना हो काकना हो बाबा फ्यो ओस्टबाटिन गटिलो ठाउँ से झोला आनला से त लड़का सामान निहराइ
1: ओहो ई बुढा लिखबे का हुई चीज जरम भर भर बराइटी रहत
0: का हुई कबु लड़का कपी हेराकै ठ कबु पेन्सिल हेराकै ठ कबु झोलै फटाकै ठ बढ़िया ठाउँ से झोला लाना नि छिक ठो
1: अरे कहाँ से नानम त
0: कहाँ से लनबो ओ त कहाँ टीकापुर म रलक रगैया झोला उडोक मसे वहाँ झिंगरान दिदी कटास गोर झोला आनला बाटी ना कबु लड़का कहाँ पिएरै ना कबु पेन्सिल रहिथिन ना झोला फाटल हुइथिन कहियक आनल झोला दस काटस बाटिन ई बुढोक ढंग कबु पसल छानकन झोला नि आनस याक ठुइ
1: ल्या ल्या मैं अब यही जाइबू रख गैया झोला उद्योग में
2: रख गैया झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जैसे स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिगड़ा झोला है मर्म फेकरा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी
3: प्रोपराइटर राम प्रसाद रतगैया संपर्क मोबाइल नंबर 98484-22373
4: मानसिक समस्या भएका बिरामीहरूका लागि सुनौलो अवसर अबदेखि टीकापुर अस्पतालमा मनोचिकित्सक डाक्टर लीला देवकोटा हरेक महिनाको प्रत्येक शनिबार आउँदै हुनुहुन्छ ससानो कुरामा तनाव हुने बारम्बार मनमा एउटै कुरा खिलिरहने कुलटमा लाग्ने छटपटी हुने मुटु धेरै ढुकढुक हुने जीवनदेखि निराश लाग्ने जस्ता मानसिक समस्या भएका नयाँ तथा पुराना बिरामीहरूले यही भदौ 13 गते 20 गते र 27 गते शनिबारका दिन बिहान ठिक 10:30 बजे अस्पतालको कोठा नम्बर 1 मा सम्पर्क राख्नुहोला टीकापुर अस्पताल टीकापुर कैलाली।

0: छिछी फिर चर्पी भर गिल का करना हो का
1: चर्पी भरल से फिर का चिंता आदित्य सेफ्टी टैंकी सर सफाई में फोन करी आ बा का सर सफाई कई दी
0: फोन नंबर कटरा हो
1: ली डायल करी 97 6 20 20 300
0: हेलो आदित्य सेफ्टी टैंकी सर सफाई हो महीन राजापुर बाजार में टैंकी सफाई करना बा
1: अपनौ कंठे टीकापुर जानकी जोशीपुर भजनी सत्ती राजापुर गेरुआ वो लमकी मन सेफ्टी टैंकी गोबर गैस और रिंग वाला टॉयलेट सर सफाई कर परिकल से आदित्य सेफ्टी टैंकी सर सफाई सेवा हाना समझावे संचालक शेरबहादुर थारू संपर्क नंबर 97 6 20 20 300 वो 98 6 56 92 026
2: एनसेल पैक किन्नु भयो त सर्तहरू लागू हुनेछन् एनसेल नेपालकै लागि

0: सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएम के बिहान 9 बजे के थारू भाषा के खोज खबर में यहां हुक रहिन स्वागत बा। खोज खबर से मई छपिलाल चौधरी के राम राम। अब अपनी सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएम 101 मेगाहर्ज के साथ अनलाइन में www.tikapurfm.org मोबाइल एप्स हाम्रो पात्रो ओ नेपाली पात्रो में फिर सुनती बाटी। खोज खबर शुरू करी खबर के मुख्य शीर्षक से रसुआ बहिया में पड़ल हुकन के आज बिहानी से उद्धार शुरू। बहिया में पड़ल 162 सब फैला पड़ल प्रधानमंत्री शाह से देशवासी के नाव में संबोधन करल। भोटेकोशी में अलग बहिया से टीकापुर में चिंता रसुआ में काम कर गैलक दर्जनौ युवा संपर्क विहीन। सक्षम हुईटी महिला जनप्रतिनिधि घरायसी काम में सीमित रहल महिला आजकाल विषय वस्तु में विचार और विमति धर सफल बनती। ओ कानूनी जटिलता के कारण सामुदायिक वन ओ उपभोक्तामुखी नहीं हुई स्याकल वन संरक्षण में लागल हुकन के गुनासो। आप पूरा खबर रसुआ बहिया में पड़ल हुकन के आज बिहानी से उद्धार शुरू हुई बा। बहिया में पड़ल मध्य 162 जाइन के सब फैला पड़ल बा। प्रहरी बुलेटिन के अनुसार 60 जिला से कई के 162 जाइन के सब फैला पड़ल हो। प्रहरी के अनुसार रसुआ में 2, नुआकोट में 12, धादिंग में 27, चितवन में 64, गोरखा में 20, तनहु में 9, नवलपरासी पूर्व में 26 और नवलपरासी पश्चिम में 2 जाइन के सब फैला पड़ल हो। नेपाल प्रहरी आभिनसम 28 जना प्रहरी कर्मचारी व 403 जना पर्यटक हुक्र संपर्क में नई लखे जनाइल बा। अस्तहे बहिया के कारण ढेरनक अस्पताल में 41 जहन के उपचार हुईती रहल प्रहरी जनाइल बा। जाकर अनुसार 20 जना त्रिवी शिक्षण अस्पताल महारंज काठमाण्डू, 4 जना ट्रमा सेन्टर, 3 जना वीर अस्पताल, 1 जना वीरेन्द्र सैनिक अस्पताल छाउनी, 3 जना नर्भिक अस्पताल में व 9 जना त्रिशूल्य अस्पताल में उपचाररत। रसुआ बहिया के कारण देश के 10% विद्युत उत्पादन में अवरोध हुई बा। 1000 से ढेर सवारी साधन में क्षति हुई बा। 2 दर्जन जतरा पुल व हाइड्रो पावर में क्षति पुगल प्रहरी जनाइल बा। भारत सरकार से रसुआ बहिया पीड़ित हुकन के सहयोग के लाग 10 टन राहत सामग्री काठमाण्डू पठाइल बा। प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह रसुआ के भोटेकोशी लद्या में अलग भीषण बहिया से हुईलक धनजन के क्षति प्रति दुख व्यक्त करके उद्धार खोज तथा राहत काम प्रभावकारी बनाई सरकार के सक्कु संयंत्र परिचालन करगिलक बटैल बाट। देशवासी के नाम में सामाजिक संजाल मार्फत संदेश जारी करती प्रधानमंत्री शाह बहिया से ज्ञान जविया प्रति श्रद्धांजलि व शोक संतप्त परिवार समवेदना व्यक्त करल बाट। वहां घायल हुकन के हालिय स्वास्थ्य लाभ के कामना करती प्रभावित नागरिक राज्य के ओर से आवश्यक सबको सहयोग उपलब्ध करेना प्रतिबद्धता व्यक्त करल बाट। प्रधानमंत्री शाह के अनुसार बहिया पाछ राष्ट्रीय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण के आकस्मिक बैठक, राष्ट्रीय परिषद के बैठक तथा मंत्री परिषद के बैठके उद्धार खोज तथा राहत काम हाली तीव्र बनैना निर्णय कैगिल बा। उद्धार तथा खोजी के लाग नेपाली सेना सशस्त्र प्रहरी ओ नेपाल प्रहरी के टोली प्रभावित क्षेत्र में परिचालन कैगिल वहां बटैल बाट। नेपाली सेना के हेलीकॉप्टर मार्फत भारी संख्या में नागरिक के हवाई उद्धार करगिलक ओ घाइल काठमाण्डू लान के उपचार के व्यवस्था मिलेलक संदेश में उल्लेख बा। घाइते के सहज व निःशुल्क उपचार के लाग काठमाण्डू के प्रमुख अस्पताल में तैयारी अवस्था में धैगिल बतैती प्रधानमंत्री शाह प्रभावित क्षेत्र में चिकित्सक तथा स्वास्थ्य कर्मी के टोली एम्बुलेंस और आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री परिचालन कैगिलक बतैल बाट। नेपाल स्काउट, नेपाल रेडक्रस सोसाइटी लगायत के संस्था संघ समेत उद्धार तथा स्वास्थ्य सेवा में समन्वय हुई रहल वहां उल्लेख करल बाट। बुधवार बिहान भोटेकोशी में अलग बहिया से करल धनजन के क्षति के खबर से टीकापुर के गांव गांव में चिंता छाइल बा। टीकापुर से वहां के जल विद्युत आयोजना में काम कर गैलक युवा हुक्र संपर्क विहीन हुई पाछ चिंता बढ़ल हो। हुक्र मध्य ढेर जाना जल विद्युत आयोजना के सुरुंग मार्ग में काम कर गैल परिवारजन बतैल बाट। टीकापुर नगरपालिका 1 समितिपुर सेकेल उहाँ काम कर जरिया 10 जना युवा सम्पर्कविहीनबाट सम्पर्कविहीन हुइनाम वीरबहादुर चौधरी, सनिश राम चौधरी, जुगराम चौधरी, शिवनारायण चौधरी, बादल चौधरी, दोर्जे कैजिना, भुवन चौधरी, खुशीराम चौधरी, मनीराम चौधरी, अन्तराम चौधरी व मानबहादुर चौधरी रहलबाट 1.5 महिना आघ काम के लाग रसुआ गैलक वीरबहादुर के जननी सुगंती चौधरी बहिया ऐलक सुनल पाछ फोन कर कोशिश करल ओ आमिसम संपर्क में हुई नई सैकल बटैल बाट वहां के युवा हूं कहना समितिपुर के तुलाराम चौधरी काम के लाग वहां लै गिल रह युवा लै जैना ठेकेदार तुलाराम ओ भानसे दिलू चौधरी कोठा में रह बेला बहिया आयल पास भागल ओ सुरूंग में काम कर पैठल युवा हूं कर संपर्क विहीन हुई बाट तुलाराम बिहान 11:30 बजे उहर फोन लागल ओ अपना दिलू डरुआ उहर भागल कहीं ओ सुरूंग में गैल हुकन के अट्टो नहीं हुईलक जानकारी दिल तुलाराम के छाई वर्षा चौधरी बटैल बाट वर्षा के अनुसार तुलाराम संकेल काम के लाग यहां के 40 जन से ढेर युवा हुकर उठाव में पुगल बाट समितिपुर के बरगद तथा संपर्क विहीन मान बहादुर चौधरी के भैया अखिल थारू ढेरनक बस्ती से ढेर मने गैलक तहुन नाव एकिन हुई नई सैकल बटैल बाट अस्ते है टीकापुर नगर पालिका एक एकतापुर से फे 9 जना युवा हुकर काम के लाग वहां गैल बाट भदौ 2 गते काम कर रसुआ गैलक युवा आशीष चौधरी के जननी दिल कुमारी चौधरी काल बिहान के 7 बजे अंतिम चो बाट हुईलक ओवा के पास संपर्क नहीं हुईलक बटैल बाट दिल कुमारी जस्ता राजकुमार थारू के जननी शांति चौधरी विपतराम चौधरी के जननी फूलमती चौधरी फे काम के लाग लै जैना समितिपुर के तुलाराम चौधरी के घर में पुगल बाट शांति चौधरी के अनुसार वहां के गोसिया राज कपूर चौधरी कमला चौधरी लगायत 9 जने युवा काम के लाग रसुआ गैल बाट बहिया पाछ उद्धार करगिलक मनेनके क्यू अस्पताल में क्यू हेलीकॉप्टर से उद्धार करगिलक उच्चा ठाव में सारगिलक खबर सुनल से फे हुकनके नाव नई बेर छटपटी लागल श्रीराम चौधरी बतैल बाट इलाका प्रहरी कार्यालय टीकापुर के प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक प्रकाश डांगी काम में गैल हुकनके परिवार संग सोधी खोजी व समन्वय हुई रह बतैल बाट जनप्रतिनिधि होके काम करने अवसर पाइल पाछ महिला के क्षमता विकास हुईबा खराएसी काम हेरचाह के काम केल व्यस्त रहना महिला जनप्रतिनिधि हुईल पाछ आपन क्षमता विकास हुईलक बतैल बाट जनप्रतिनिधि हुईना से आघ आपन परिचय देहवेर समेत आत्मविश्वास नहीं हुईलक महिला हुकर आजकल निर्धक्क विषय वस्तु में बोलना आपन विचार धरना विमति धरना हुईल बाट हुकरहीन लगथिन की महिला घर भीतर सीमित हुई बेर क्षमता विकास नहीं हुई ना रह घर बाहर निष्कबेर समाज और देश के लाग काम करबेर आपन फे क्षमता विकास हुईना वड़ा नंबर 4 के वड़ा सदस्य निर्मला परियार के अनुभव बा वड़ा सदस्य में निर्वाचित हुई पाछ क्षमता विकास संग वड़ा महीना बजेट विनियोजन और नीति निर्माण बारे जानकारी पैलक उहां के कहे बा जानकी गांवपालिका कार्यपालिका सदस्य इन्द्र सोफे आपन क्षमता विकास हुईलक बटैल बाट घरायसी काम मकेल सीमित सोप जनप्रतिनिधि के भूमिका पाइल पाछ गांव समुदाय में नागरिक के आवश्यकता अनुसार योजना छनौट करना काम सिकाई हुईलक बटैल बाट महिला हुकर बाहरी काम में नई न्यांगबेर सूचना तथा जानकारी से दूर रहना हुईलक मार महिला हुकर सामाजिक तथा अन्य काम के लाग बाहरी वातावरण में आए वहां आग्रह करल बाट जानकी गांव पालिका वड़ा नंबर 2 के वड़ा सदस्य शांति देवी कामी जनप्रतिनिधि होकर काम करलक 9 वर्ष पूरा हुईलक ओ 2 कार्यकाल जनप्रतिनिधि के भूमिका निभैलक फे वहां के क्षमता फे काम करना अवसर ले विकास हुईलक हो महिला अवसर पाइल पाछ कर श्रेष्ठ कना उदाहरण बनती गैलक जनप्रतिनिधि महिला पुष्टि करल बाट कानून हरेक वड़ा में 2 जना महिला अनिवार्य व्यवस्था करल बा जनप्रतिनिधि बनना अवसर पैलक महिला के क्षमता विकास हुईना के साथ समाज विकास और सामाजिक कार्य में महिला के सक्रियता बढ़ल बा खोज खबर में कानूनी जटिलता के कारण सामुदायिक वन उपभोक्तामुखी बन नहीं सकल लगायत के खबर बाकी बा सुनती रवि सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम
1: इतनी छिटो आमा बन लागो तो
2: भाग
1: मेरो साथी बाल विवाह गरेर आफ्नो वर्तमान र भविष्य दुवै अन्योलमा पारी 20 वर्ष मुनि हामी कसैले पनि विवाह वा भागी विवाह नगरौ।
2: जानकी गाउँपालिका 9 नम्बर वडा कार्यालयद्वारा जनहितमा जारी सन्देश।
3: टिकापुर नगरपालिकाको आइरन तथा फोलिक एसिड खुवाउने कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना।
4: टिकापुर नगरपालिका अन्तर्गत रहेका सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयहरूमा 10 वर्षदेखि 19 वर्षसम्मका किशोरीहरूलाई आइरन तथा फोलिक एसिड खुवाउने कार्यक्रम साउन 4 गतेदेखि 13 हप्तासम्म नियमित रूपमा रहेको बेहोरा सरकारवालाहरूलाई यसै सूचना मार्फत जानकारी गराइन्छ।
3: टिकापुर नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय टिकापुर। भागीरथी मेडिकल टिकापुरमा विशेषज्ञ डाक्टर आउने बारेको सूचना। डाक्टर बमबहादुरको क्लिनिक भागीरथी मेडिकल सेन्टर टिकापुरमा भदौ 13 गते दोस्रो शनिबारका दिन नेपालगंज मेडिकल कलेजमा कार्यरत धेरै अनुभवी र सिनियर मानसिक रोग मिर्गी रोग तथा नशा रोग विशेषज्ञ डाक्टर तनवीर अहमद खान एमबीबीएस एमडी न्यूरो साइकेट्री आउने भएकोले निम्न समस्या भएका बिरामीहरूले समयमै नाम लेखाई मौकाको फाइदा उठाउनका लागि सबैमा जानकारी गराइन्छ। समस्याहरू मिर्गी रोग, मुखबाट फिज आएर घाँटी बाङ्गो भई बेहोस हुनु, मुटुको ढड़कन कम वा ज्यादा हुनु, लामो समयदेखि टाउको दुख्नु, छटपटी लाग्नु, जिउ झमझम हुनु, जलन हुनु, चिन्ता मान्नु, जीवनसित निराश हुनु, आत्महत्याको इच्छा लाग्नु वा प्रयास गर्नु, धेरै शंका मान्नु, कानमा बोले जस्तो लाग्नु, कोठामा एक्लै बस्न मन लाग्नु, काममा मन नलाग्नु, झर्को मान्नु, रिसाउनु, बिना कारण हाँस्नु, मुस्कुराउनु, रुनु, घर छोडेर भाग्नु, यौन इच्छाको कमी हुनु, जाँड, गाँजा, चरेस, रक्सी, ब्राउन सुगर, नशाको चक्की जस्ता कुलतलाई छोडाउने उपचार र मानसिक तथा नशा सम्बन्धी सम्पूर्ण रोगको उपचार र सल्लाह लिई सम्पूर्ण समस्याको समाधान गरी निरोगी खुशी जीवनको आनन्द लिऊ। हाम्रो यहाँ इसिजी र ल्याब टेस्टको सम्पूर्ण सुविधा उपलब्ध छ। स्थान डाक्टर बमबहादुरको क्लिनिक भागीरथी मेडिकल सेन्टर सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएमको नजिकै टिकापुर। टाढाका बिरामीहरूले नाम लेखाउन र विस्तृत जानकारीको लागि सम्पर्क नम्बर 091-560-228-97083-58-835 र 98-650-40-777। समय बिहान 10 बजेदेखि दिउँसो 3 बजेसम्म। डाक्टर आउने दिन भदौ 13 गते दोस्रो शनिबार।
0: टिकापुरमा नगर स्तरीय बाल अधिकार समिति संघ बाल संरक्षणको सवालमा छलफल हुल्बा। बाल कल्याण संघ, स्थानीय अवस्था विश्लेषण संघ, प्राप्त सवाल व समाधानकै लागि निर्माण गरल पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना 2078 लिहेल योजना कार्यान्वयन हुल नै हुल बारे छलफल हुलक हो। 2078 सालमा बाल अधिकार समितिकै 5 वर्षे कार्ययोजना समेत बनाइल रह। बाल मैत्री नगरकै परिकल्पना अनुसार हिंसा न्यूनीकरण, शिक्षा, कुलत, बाल अधिकार लगायतकै 4 क्षेत्रमा प्राथमिकता दिएके कामकै गिलक वा कर्पाछ हुइलक उपलब्धिकै समीक्षाकै गिलक कार्यक्रम अधिकृत राधिका गिरी बतैलबाट। कार्यक्रममा नगर स्तरीय बाल अधिकार समितिकै संयोजक लालवीर चौधरी, टिकापुरमा बाल संरक्षणके सवालमा धेर काम हुलक, वाकर संघ संस्थाके सहयोग मिलल ओ तभुन पालिकाके तथ्याङ्क व्यवस्थापन करण नै स्याकल बटैलबाट। वर्ल्ड भिजन इन्टरनेशनल नेपालके सहयोगमा बाल कल्याण संघके आयोजनामा कार्यक्रम हुलक हो। कानूनी जटिलताकै कारण नेपालमा सामुदायिक वन हुक्र उपभोक्तामुखी हुई नै स्याकल वन संरक्षणमा लागल हुक्र गुनासो करलबाट। सामुदायिक वन उपभोक्तामुखी बनाइपर्दा यी क्षेत्रकै वन संरक्षणकर्मी हुक्र बटैथ। नेपाल सरकारकै वन ऐन 2076 से स्थानीय समुदाय सामुदायिक वन मार्फत संरक्षण सम्वर्धन व उपयोग गर्न अधिकार हो जिम्मेवारी दिएगिल सेफे यी अधिकार लागू नै हुलक वन संरक्षणमा लागल हुकनके गुनासो बा। कैलालीके टिकापुर क्षेत्रके सामुदायिक वन हुकनमा आबद्ध हुल वन संरक्षणमा जुटल हुक्र वन संरक्षण करल से फे काम करबेर सामुदायिक वन के उपभोक्ता हो रही समस्या हुई ना करल उपभोक्ता के आवश्यकता पूरा कर नहीं से गिलक संरक्षण में लागल हुकर बतैल बाट टीकापुर स्थित रानी कर्णाली सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह के अध्यक्ष रमेश विश्वकर्मा बतैथ। अस्तह भगरैया सामुदायिक वन संरक्षण समिति के अध्यक्ष सिंहराज बुढ़ा मगर फे कुछ कानूनी जटिलता के कारण सामुदायिक वन में काम कर समस्या हुई थी रहल बतैथ। वहां कठ सामुदायिक वन संरक्षण वाकर उपभोग संदर्भ में सकुन से लघ सरकार स्थानीय सरकार हिलक मार टीकापुर नगर पालिका से सामुदायिक वन सहयोग कर पर्ना बतैथ। टीकापुर वन संरक्षण समिति के अध्यक्ष नयन सिंह ठकुल्ला फे कानूनी जटिलता के कारण वनों में काम कर समस्या हुई रहल बतैथ। सामुदायिक वनमें इना छूटमूट समस्या हल करक लाखे टीकापुर नगर पालिका फे पहल कर पर्ना अध्यक्ष ठकुल्ला के कहेबा। सामुदायिक वन के रेखदेख सबको स्थानीय उपभोक्ता कर पर्ना हो वही से उपभोक्ता कुछ लाभ हुईना काम करी कहबेर कानून बंदेश करना हुईलक मार सामुदायिक वन काम कर समस्या हुई थी रहल बा। वह कारण ई विषय में ध्यान दिह पर्ना बतैथ। सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ के केन्द्रीय सदस्य तथा जनशक्ति सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह के टीकापुर के अध्यक्ष दीर्घ तिरुआ। नेपाल सरकार के वन ऐन 2076 अनुसार नेपाल के राष्ट्रीय वन सामुदायिक वन कबूलियत वन धार्मिक वन निजी वन और संरक्षित वन में विभाजन कई गिलबा। खोज खबर में आकुर खबर पलिबा सुनती रवी सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम।
5: टीकापुर नगरपालिका को ग्रामीण अल्ट्रासाउंड सेवा बारे अत्यंत जरूरी सूचना।
6: टीकापुर नगरपालिकाको आयोजनामा नगरपालिका भित्रका तपसिलका ओडाहरूमा गर्भवती महिलाहरूका लागि निशुल्क ग्रामीण अल्ट्रासाउण्ड सेवा तपसिलको मिति स्थान र समयमा सञ्चालन हुने भएकाले सम्पूर्ण सरकारवालाहरूलाई सेवा लिन आउन हुन अनुरोध गरिन्छ। वडा नम्बर 6 नारायणपुर स्वास्थ्य चौकी भदौ 10 गते
5: र वडा नम्बर 7 छत्ती शहरी स्वास्थ्य केन्द्र भदौ 11 गते
6: सबै वडाहरूमा भेला हुने समय बिहान 10 बजे देखि।
5: टीकापुर नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय टीकापुर कैलाली।
6: के तपाई चाया डन्डीफोर दाद एलर्जी कपाल झर्ने समस्याबाट पीडित हुनुहुन्छ?
7: अब टीकापुरमा रहेको मनिष मेडिकल हलमा काठमाडौँका वरिष्ठ छाला यौन तथा कुष्ठ रोग विशेषज्ञ डाक्टर लोकेन्द्र लिम्बू
8: यही भदौ 13 गते दोस्रो शनिबारका दिन
7: मनिष मेडिकल हल टीकापुरमा आउँदै हुनुहुन्छ।
6: मनिष मेडिकल हलमा पाइने सेवाहरू: अनुहारमा चाया डन्डीफोर चिरा परेको फुस्रो र कालो दाग देखिने समस्या, कपाल चिलाउने चाया पर्ने डेन्ड्रफ, कपाल झर्ने रौ नजम्ने तालुको रौ झर्ने समस्या, अनुहार खस्रो हुने फुट्ने चिरा पर्ने अनुहार बाङ्गो हुने समस्या, छालामा एलर्जी आउने चिलाउने दुख्ने घाउ दुबीको समस्या, लाटो र फुस्रो दाग देखिने पुरानो भन्दा पुरानो छालाको घाउ ठिक नहुने इक्जेमा सोरियासिस गोलो दाग बारम्बार उपचार गर्दा ठिक नहुने छाला सम्बन्धी रोगको समस्या पुरुष र महिलाको गुप्ताङ्गमा दाना आउने चिलाउने धातु खस्ने सेतो पानी बग्ने यौन दुर्बलता शीघ्र पतन जस्ता समस्याको जाँच र उपचार गरिने अनुभवी स्वास्थ्य कर्मीहरूद्वारा स्वास्थ्य परामर्श तथा उपचार गरिने साथै प्रत्येक दिन एमबीबीएस फिजिसियन डाक्टरद्वारा पेट छाती मुटु र थाइराइड चेक जाँच तथा स्वास्थ्य परामर्श पनि दिइन्छ।
8: डाक्टर आउने दिन भदौ 13 गते दोस्रो शनिबार।
7: स्थान मनिष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर एक कैलाली। सम्पर्क फोन नम्बर 9860071024 र 9806477417।
0: कैलालीमा श्रीमान के हत्या करल आरोपमा प्रहरी वहाँ के श्रीमती सहित पाँच जहिना पक्राउ करल बा। लम्की चोहा नगरपालिका 4 के 33 वर्षीय दीपक सुनार साउन 22 गते बिहान से जानकी गाउँपालिका 9 अमरावती स्थित ससुरार घर से हेरैलक कटी वहां के श्रीमती यमुना सुनार प्रहरी जानकारी करैल रहल ह। प्रहरी खोजतलाश तथा अनुसन्धान करना क्रम में यमुना प्रेमी संघ के मिलोमतो में श्रीमान के हत्या करैल योजना बनायल तथ्य खुलल जनायल बा। प्रहरी के अनुसार दीपक के हत्या कैक सब कर्णाली लद्दे में फकागिलक प्रारंभिक अनुसंधान से खुलल बा। घटना में संलग्न हुईलक आरोप में प्रहरी भदौ 9 गते कैलाली व कंचनपुर के धेरनक ठाव से 5 जाहिना पकड़ाऊ करल हो। पकड़ाऊ पर्ना में लम्कीचोहान नगरपालिका 10 के 41 वर्षीय दुर्योधन सुवर्णकार, लम्कीचोहा 4 के 32 वर्षीय यमुना सुनार, टीकापुर नगरपालिका 3 के 32 वर्षीय राम राजेश महतो, कञ्चनपुर बेलौरी नगरपालिका 9 के 56 वर्षीय वीरेन्द्र राणा ओ बेलौरी 8 के 32 वर्षीय भीमा राणाबाट पधरी जिल्ला पधरी कार्यालय कैलालीका अनुसार पक्राउ प्रक्रियामा कैलाली जिल्ला अदालतसे म्याद थप गरिक घटनाबारे थप अनुसन्धान हुइतिरहल बा। यहाँ समाचार संग खोज खबर ओराइल। अन्तिममा जैती जैती खबर के मुख्य शीर्षक एक फ्यारा फेर्से। रसुवा बहियामा परल हुकनके आज बिहानी से उद्धार शुरू। बहियामा परलमा 162 सब फेला परल, प्रधानमन्त्री शाहसे देशवासी के नाउँमा सम्बोधन गर्ला। भोटेकोशीमा ऐलक बहियासे टीकापुरमा चिन्ता, रसुवामा काम गर गैलक दर्जनौ युवा सम्पर्क विहीन। सक्षम हुई महिला जनप्रतिनिधि, घरायसी काम में सीमित रहल महिला जनप्रतिनिधि आजकल विषय वस्तु में विचार और विमती धर सक्षम बनती। ओ कानूनी जटिलता के कारण सामुदायिक वन हुक्र उपभोक्तामुखी बन नई सकल, वन संरक्षण में लागल हुकन के गुनासो। अब खोज खबर अतः प्राविधिक मित्र धन्यवाद देती। मई छपिलाल चौधरी फिर विदा हुई टू सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम सुनती रवि। राम राम।
9: नेपालगंज मेडिकल कलेज में कार्यरत वरिष्ठ यौन रोग मानसिक नशा एवं लागू औषध कंसल्टेंट न्यूरोसाइकोट्रिक डॉक्टर आइनोडीन बागवान
10: यही भदौ 20 गते शनिवार का दिन
11: आरोग्य मेडिकल सेंटर एंड क्लिनिक टीकापुर में आउँदै हुनुहुन्छ। त्यसैले यौन रोग मानसिक तथा नशा एवं लागू औषध संबंधी समस्या भएका बिरामीहरूले सम्पर्क गर्नुहोला।
9: लामो समयसम्म टाउको दुख्ने, बढी रिसाउने, झिझो मान्ने, बरबराउने, अमिलो व्यवहार गर्ने, कामकाजमा मन नलगाउने, एक्लै बसेर टुलाउने, भोक नलाग्ने, निन्द्रा नलाग्ने, दुब्लाउँदै जाने, धेरै रक्सी खाने, लागू पदार्थ सेवन गर्ने,
11: त्यस्तै बच्चा तथा वृद्ध ओछ्यानमा पिसाब गर्ने, स्मरण शक्तिको कमी तथा पढाइमा कमजोरी, छारे रोग, मिर्गी र बेला बेलामा बेहोस हुने समस्या, नकारात्मक सोचाइ आउने, यौन सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्या भएका बिरामीहरूले अग्रिम नाम दर्ता गराउनुहोला।
10: डाक्टर आउने दिन यही भदौ 20 गते शनिबार।
12: डाक्टर भेट्ने समय बिहान 8 बजेदेखि 12 बजेसम्म। बिरामी जाँच गर्ने स्थान आरोग्य मेडिकल सेन्टर एन्ड क्लिनिक अस्पताल रोड टीकापुर। टाढाका बिरामीले फोन मार्फत नाम दर्ता गर्न सक्नुहुनेछ। याद गर्नुहोस्, आरोग्य मेडिकल टीकापुरमा अबदेखि भिडियो एक्सरे सेवा उपलब्ध छ। सम्पर्क फोन नम्बर 98 68 80 00 08 र 98 25 63 77 72।

0: सुरक्षित जीवन जीवन जीवन बीमा जरूरी छ। रिलायबल लाइफ सधैं भरिलाई।
1: समुन्नत समाज का लागि समावेशी आवाज सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम 101 मेगाहर्ज।

0: कबू का पी रही था, कबू पेंसिल रही था, कबू झोले फटाका आजी था, कहा कना हो कहा कना हो। बाबा फिर उस टपाटी गटीलो ठाव से झोला आनल से तो लड़का सामान नहीं हरे।
1: ओहो ये बुढ़ा लिख में का हुई थी, जरम भर भर बराई थी राहत।
0: का हुई कबू लड़का कभी हेरा कही था, कबू पेंसिल हेरा कही था, कबू झोले फटा कही था, बढ़िया ठाव से झोला लाना नहीं चिक ठो।
1: अरे कहाँ से ना नाम था,
0: कहाँ से लन बो, वो तो कहाँ टीकापुर में रलक रट गई झोला उडोक में से। वहाँ झिंगरान दीदी कटरा से गुड़ झोला आनल बाटी, ना कबू लड़का कहाँ पी रही थी, ना कबू पेंसिल रही थी, ना झोला फाटल हुई थी, कहिए आनल झोला दस का टस बाटी। ये बुढ़क ढंग कबू पसल छान कर झोला नहीं आना से आकट हुई।
1: लिया लिया मैं अब भी जाबू रख गई झोला उद्योग में, रख गई झोला उद्योग। हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत, जैसे स्कूल बैग, कैरिंग बैग, फाइल बैग, लगेज बैग लगा के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए। पुरान बिकला झोला है, मरमत फेंकरा जाए, एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी।
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रतगैया, संपर्क मोबाइल नंबर 98484223373।
3: हेलो बहनी कता हो, तिमी था कि नहीं सीजी कंपनी को वाई वाई जिंक 15 रुपया में एक पेटी रूपान से 60 में उपहार सहित एक कसौरा पनि पाइन्छ। तिमीले कति में किन्यौ?
4: मैले त एक पेटी चाउचाउ रु 600 में किने।
3: 600 रुपया किन हाल्नु पर्यो? 560 में त ब्लक नंबर 14 में रहेको हरिलाल किराना पसल में रु 15 वाला चाउचाउ पाइन्छ, त्यो पनि सीजी कंपनी को गुणस्तरीय चाउचाउ। र त्यस्तै रु 25 को क्लासिक चाउचाउ र 35 को चाउचाउ रु 2500 रुपया में आउँदैछ नि, त्यो पनि हरिलाल किराना पसलमै छ। फेरि 500-600 रुपया वाईवाई मै किन हाल्ने? 460 में मामा चाउचाउ हरिलाल किराना पसलमै पाइन्छ, त्यो पनि वाईवाई सीजी कंपनी को। र रिचार्ज कार्ड पनि पाइन्छ, भुलेर पनि अरु ठाउँमा नजानुस् है। होलसेल र खुद्रा को दरमा बिक्री गरिनुका साथै क्वांटिटी अनुसार दर मिलाएर बिक्री गरिन्छ। आधिकारिक विक्रेता हरिलाल किराना पसल, साथै हिन्दू नारीहरूको महान चाड हरितालिका तीर 2083 सालको पावन अवसरमा सम्पूर्ण ग्राहक नेपाली दाजुभाइ तथा दिदी बहिनीहरूलाई हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ।
4: हरिलाल किराना पसल, ब्लक नम्बर 14 पार्क रोड टिकापुर कैलाली, संचालक प्रदीप बहादुर विष्ट, सम्पर्क नम्बर 98484022141।
5: के तपाईँ चाया, डन्डीफोर, दाद, एलर्जी, कपाल झर्ने समस्याबाट पीडित हुनुहुन्छ?
6: अब टिकापुरमा रहेको मनिष

0: हिन्दू महिलाहरूको महान चाड हरितालिका तीज 2083 सालको पावन अवसरमा सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ तथा दिदी बहिनीहरूमा हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दै लक्ष्मी आभूषण भण्डारमा छड्के तिलहरी, माइली तिलहरी, रामलीला झुम्का, पिजडा झुम्का, बाला, औठी, पेण्डल, चन्द्रमा र अर्डर गरे अनुसार सुन चाँदीका गरगहनाहरू सुपथ मूल्यमा बनाइन्छ। एक पटक सेवा गर्ने मौका अवश्य दिनुहोला। लक्ष्मी आभूषण भण्डार, सिद्धार्थ चौक, टिकापुर, कैलाली। संचालक प्रकाश भण्डारी। सम्पर्क नम्बर 98 48 53 61 95।
1: आई बुढल्ला सुन्टो कि नै वानन्दे गोज आगिले न अब समय एक ठो घर गहना नै हो भनै नाउने न पट्टा नि पैना त
2: अजि गहना बनैना त हो दुकान खोस्ती खोस्ती परेशान आटु कहाँ बनाऊ कहाँ बनाऊ
1: तुहार बाटस तर तुहार रामपुरान दिदी कहिले नै सामुएल ज्वेलर्स म से गहना बना कान्छे के कत्रा सुघर बना कन लबाटी
2: ए ले ले ठिक बा चल हाली भात वात खाइ आऊ जाइका हुँ सामुएल ज्वेलर्स में गर गहना बनाई सामुएल ज्वेलर्स बलभद्र चौक चिकापुर प्रोप्राइटर तेहरी सिंह सुनार
1: हमारे यहाँ हरेक मेरी सुन चांदी के गर गहना बना जाए रसायन बिना रसायन के गर गहना बना जाए ओ ऑर्डर अनुसार फिर बना जाए मोबाइल नंबर 98 6 84 41 208 98 4 86 39 261।

0: कब्बू का पिए रही था, कब्बू पेंसिल ले रही था, कब्बू झोले फटाका आजी था, का कना हो का कना हो। बाबा फिर उस बाटिन गतिलो ठाव से झोला आन से तो लड़का सामान नहीं हरे।
1: ओहो, ये बुढ़ा लिख में का हुई थी, जरम भर भर भर थी राहत
0: का हुई। कब्बू लड़का कॉपी हेरा कई था, कब्बू पेंसिल हेरा कई था, कब्बू झोले फटाका कई था, बढ़िया ठाव से झोला लाना नहीं चिक ठो।
1: अरे कहाँ से नानम था,
0: कहाँ से लन बो, वो तो कहाँ टीकापुर में रलक रख गई झोला उडोक में से। वहाँ झिंगरान दीदी कटरा से गुड़ झोला आन लाटी, ना कब्बू लड़का कापी हरी थी, ना कब्बू पेंसिल हरी थी, ना झोला फाटल हुई थी, कई एक आनल झोला दस का टस बाटिन। ये बुरह ढंग कब्बू पसल छान कर ना झोला नहीं आना से आकट हुई।
1: लिया लिया मैं अब नहीं जाइबू रख गई झोला उद्योग में। रख गई झोला उद्योग, झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत, जैसे स्कूल बैग, कैरिंग बैग, फाइल बैग, लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए। पुरान बिगड़ा झोला है मरम्मत फेंकरा जाए, एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी।
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रतगैया, संपर्क मोबाइल नंबर 98484-22373।
3: यो खाने मन त कहाँ छ र, तर के गर्नु, जीवन एक्लो एक्लो लाग्छ, फेरि खानै पर्छ।
4: तत एक्लो कहाँ छ श्रेया, त्यति माया गर्ने आमा छिन्, दिदी छिन्, भाइ छ, बरु एक्लो त म छु। म पनि पहिले आफूलाई एक्लै सम्झिन्थे, कुलत छुटेपछि पो थाहा पाएँ यो सुन्दर संसार कति सुन्दर रहेछ, बाँच्नुपर्छ अनि पो संसारको मजा लिन पाइन्छ।
3: हो र, तेरो त अहिले टन्न कमाइ छ र, त्यसो भन्छ
4: अनि सुधार गृहमा बसेको बेला कसको पो कमाइ हुन्छ त, जब म निस्केँ काम गर्न थाले अनि पो कमाइ छ त। यो कमाइ पनि मेरो लागि होइन, हिजो मेरो कुलतमा हुँदा आमा रुँदै रुँदै जानुभयो, अब घरजम गर्नु छ, श्रीमती छोराछोरी होला उनीहरूको लागि पनि सोच्दैछु म।
3: ओहो, तैँले त साँच्चै एक्लो हुँदा पनि भोलिको सुन्दर संसार सोचिसकिस जस्तै यार। अब म पनि कुलत छोड्छु, आमा दिदी भाइ सबै परिवारलाई खुसी बनाउँछु, भोलिको जीवन सुन्दर बनाउने कोसिस गर्छु।
5: जानकी गाउँपालिका 9 नम्बर वडा कार्यालयद्वारा जनहितमा जारी सन्देश।

0: हुक्का पिएरै त कबु पेन्सिलेरै त कबु झनै फटाका आजिठ काकना हो बाबा फ्यो ओस्टबाटिन गटिलो ठाउँ छ झलान लसे त लड्का सामान्य हेरे
1: ओहो ई बुढा लिखबे का हुइति जरम भर भर बराइति रहत
0: का हुई कबु लड़का कपी हेरा कैठ कबु पेन्सिल हेरा कैठ कबु झोलै फटा कैठ बढ़िया ठाउँ से झोला लान नि छिक्ठो
1: अरे कहाँ से नानम त
0: कहाँ से लनबो वो त कहाँ टीकापुर म रलक रटगे यहाँ झोला उडोक म से वहाँ झिंगरान दिदी कट्रास गोर झोला आन लबाटी ना कबु लड़का कहाँ पिहरी थी ना कबु पेन्सिल हेरै थीन ना झोला फाटल हुई थीन कैक आनल झोला जस काटस बाटिन ये बुढ़ ढंग कबु पसल छानकन झोला नि आन स्याक ठुई
1: लिया लिया मैं अब भी ही जाइबू रख गई झोला उद्योग में रख गई झोला उद्योग
2: झोला उद्योग
1: हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जैसे स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिगड़ल झोला है मर्म फेंकरा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी
3: प्रोपराइटर राम प्रसाद रतगैया संपर्क मोबाइल नंबर 98484223373
4: लैंगिक हिंसा प्रभावितहरूको गुणस्तरीय बहुपक्षीय न्यायिक सेवाका लागि टीकापुर अस्पतालमा रहेको एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्र ओसीएमसी सँग सहकार्य गरौं।
5: यो ओसीएमसी भनेको के आयो फेरि?
6: ओसीएमसी भनेको लैंगिक हिंसा प्रभावित महिला बालबालिका तथा पुरूषहरूलाई एकीकृत रूपमा बिना भेदभाव गुणस्तरीय सेवा चिकित्सा जन्य प्रमाण संकलन र संरक्षण आवश्यक मनोविमर्श सेवा आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था र परिवार वा समुदायमा पुनस्थापना जीविकोपार्जन तथा कानूनी सहयोग र सुरक्षित आवास उपलब्ध गराउने उद्देश्यले तोकिएको केन्द्र प्रदेश वा जिल्ला अस्पतालहरूमा व्यवस्थापन गरिएको संकट व्यवस्थापन केन्द्र हो।
5: ओसीएमसीले के सहयोग गर्छ त?
6: यस अन्तर्गत 2078 सालबाट टीकापुर अस्पतालमा पनि ओसीएमसी स्थापना भई लैंगिक हिंसा प्रभावित र पीड़कलाई समेत स्वास्थ्य लगायत सूचीकृत सबै सेवाहरू उपलब्ध गराउँदै आइरहेको छ। त्यसैले कुनै प्रकारको लैंगिक हिंसा प्रभावितहरूको स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक परामर्श सेवाका साथै अन्य सूचना तथा जानकारी लिनका लागि टीकापुर अस्पताल ओसीएमसीमा सम्पर्क राख्नुहोला।
7: थप जानकारीका लागि ओसीएमसी टीकापुर अस्पतालमा सम्पर्क राख्नुहोला। सम्पर्क नम्बर 98584899213 इमेल ocmcticapur@gmail.com।

0: आज तिमी मेरो वरिपरि किन घुम्दैछौ छोरी?
1: आमा, मलाई सिक्री बनाइदिनुहोस् न, लाउन कस्तो रहर लाछ।
0: पैसा पनि त हुनु पर्यो नि छोरी, फेरि पढ्ने लेख्ने मान्छेले।
1: मेरो खुतुर्के छ नि आमा, मैले कति धेरै पैसा जम्मा गरेकी छु, फेरि सुन त, पछि पनि काम लाउन सक्यो नि।
0: कुरा राम्रै हो छोरी, तर कसकोमा जाने हो त?
1: न्यू असम जालपा देवीमा कस्तो राम्रो गहना पाउँदो रहेछ, अस्ति नै हेरिसके मैले त।
2: न्यू असम जालपा देवी ज्वेलर्स, सिद्धार्थ चोक टिकापुर। न्यू अछाम जालपा देवी ज्वेलर्समा नयाँ नयाँ डिजाइनका विभिन्न गरगहनाहरू, माइली तिलहरी, हार, झुम्का, छड्के तिलहरी, बाला, चुरा, चन्द्रमा, जन्तर, चन्द्रहार, इन्डियन मंगलसूत्र, औठी, सिक्री, बिनारसनका गरगहनाहरू पाइन्छन्। साथै चाँदीका सम्पूर्ण भाँडाकुँडा पनि उपलब्ध छन्। अछाम मंगलसैनको शाखा टिकापुरको सिद्धार्थ चोकमा रहेको जानकारी गराइन्छ। प्रोप्राइटर ध्रुव सुनार, फोन नम्बर 98688147979, 98247025। अछाम मंगलसैनका लागि ध्रुव सिंह सुनार, गोपाल सुनार, फोन नम्बर 98247628225।
3: फेर चर्पी भरगिल का करना हो का?
4: चर्पी भरलो से फिर का चिंता? आदित्य सेफ्टी टेंकी सर सफाई में फोन करी, आप बाक सर सफाई कई दी।
3: फोन नंबर कटा हो त
4: ली डायल करी 97-620-20-300।
3: हेलो, आदित्य सेफ्टी टेंकी सर सफाई हो? महिन राजापुर बजार में टैंकी सफाई करना बा।
4: अपनों कंठे टीकापुर, जानकी, जोशीपुर, भजनी, सत्ती, राजापुर, गेरुआ वो लमकी मना सेफ्टी टैंकी, गोबर गैस और रिंग वाला टॉयलेट सर सफाई करा परिकल से आदित्य सेफ्टी टैंकी सर सफाई सेवा हना समझावे। संचालक शेरबहादुर थारू, संपर्क नंबर 97-620-20-300 और 98-656-92-026।

0: सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएमके सन्जे 5 बजे थारू भाषा खोज खबरमा अपनकन स्वागत बा। खोज खबर समय गीता चौधरी राम राम। अपनाउक्रा बस सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम 101 MHz के संग अनलाइनमा www.tikapurfm.org मोबाइल एप्स हाम्रो पात्रो नेपाली पात्रो मफे सुन्ति रहल बाटी। खोज खबर शुरू गरी खबर के मुख्य मुख्य शीर्षक से बाढ़ी के कारण प्रभावित 336 जना के हवाई से उद्धार, बाढ़ी पीड़ित के लागि विभिन्न ठाउँ से सहयोग रकम संकलन हुई थी। बाढ़ी प्रभावित विदुर से प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह फिर्ता हुईला, भौतिक मंत्री लामसाल नुआकोट में। उपराष्ट्र मंत्री खनालो बेलायती समकक्षी मिली बैंड बीच टेलीफोन वार्ता। रसुआ के भोटे कोशी लडियामा ऐलक बाढ़ी के कारण प्रभावित 336 जना के हवाई उद्धार करगिलबा। आज बिहान थी से रसुआ के तिमुरे धुन्ची व मैलुंग क्षेत्र से 6 देश के 45 विदेशी सहित हुकन के उद्धार करगिला खो। नेपाली सेना के झण्ड 4000 फौज के समन्वय वन घाइटे के खोज तथा उद्धार, आपतकालीन उपचार और राहत वितरण के काम हुई तिरलक सैनिक प्रवक्ता राजा राम बस्नेत जानकारी देलाबाट। सेना के अनुसार टिमुरे क्षेत्र में हेरैती रलक 21 जना भारतीय पर्यटक केफे उद्धार करकन काठमाण्डौ लैजिना तैयारी हुईलबा। सरकार आज बिहान थीसे तटीय क्षेत्र तथा प्रभावित इलाका हुकन मन खोजी उद्धार और राहत कार्य यहां थप तीव्र देलबा। जोखिम अपलक नागरिक हुकन के सहायता के लागि सेना काल रात से नही आवश्यक खाद्यान्न सामग्री, टेन्ट व दवाई जसिन राहत सामग्री प्रभावित क्षेत्र मन पुगा सेक्लबा। उद्धार तथा खोजी काम में सुरक्षा निकाय के सक्पु निजी क्षेत्र के फे महत्वपूर्ण सहयोग सहकार्य रहलबा। नेपाल पत्रकार महासंघ रसुआ बाढ़ी के कारण बेपत्ता पत्रकार और पत्रकार के परिवार के तत्काल खोजी कर संबंधित निकाय से मांग करलबा। महासंघ के महासचिव रामप्रसाद ढकाल दाहाल एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करती असीन मांग कर लखट। विज्ञप्ति समाचार संकलन के लाग केरूंग हुईटी तिब्बत उहर गैलक महासंघ के पूर्व केन्द्रीय सदस्य टेकराज थामी केरूंग से संपर्क विहीन हुईलक खबर परिवार से प्राप्त हुईलक उल्लेख बा। वस्तक नुआकोट के विदुर सार से पत्रकार निराजन पौडेल के परिवार के 5 जना सदस्य संपर्क विहीन हुईलक जानकारी आयल बा। जानकारी आई लगे विज्ञप्ति में उल्लेख बा। महासंघ तत्काल आवश्यक पहल कई का हुकन के खोजी कार्य तीव्रता दिए संबंधित निकाय से जोरदार मांग कर लबा। वस्तकन बाढ़ी प्रभावित क्षेत्र में विद्युतीय आपूर्ति बंद हो का संचार सेवा अवरूद्ध हुई बेर संचार माध्यम संचालन मन असर पुगलक विषय में फिर महासंघ के विज्ञप्ति में उल्लेख बा। रसुआमा ऐलक बाढ़ी के कारण हुईलक दुखद घटनाप्रति दुख व्यक्त करती धनगढ़ी स्थित माया मेट्रो अस्पताल 3,11,111 रूपया आर्थिक सहयोग करलबा। अस्पताल प्रधानमंत्री देवी प्रकोप राहत कोष में रकम जमा कर लखो। धनगढ़ी उपमहानगरपालिका 3 चटकपुर स्थित अस्पताल दुखद की ई घड़ी मन पीड़ित परिवार न कुश राहत पुग कना उद्देश्य लेके ऊ रकम प्रधानमंत्री देवी प्रकोप राहत कोष मन जमा करलक जनैलबा। अस्पताल विपद के समय में पीड़ित परिवार प्रति ऐक्यबद्धता जनैती करलक सहयोग ले मानवता व सामाजिक उत्तरदायित्व प्रति के आपन प्रतिबद्धता झलकैना बटोलबा। माया मेट्रो अस्पताल आपन सेवा में समर्पित जीवन बचाई प्रतिबद्ध संस्था के रूप में प्रस्तुत करती आयलबा। अस्पताल परिवार के विपद के बेला विपद पीड़ित तथा प्रभावित नागरिक सहयोग कर सकोना आपन आपन क्षेत्र से योगदान कर समेत आग्रह करलबा। रसुआमा ऐलक भीषण बाढ़ी से प्रभावित नागरिक के उद्धार और राहत के लागि धनगढ़ी स्थित चैतन्य पाठशाला 1,11,111 रूपया सहयोग करलबा। चैतन्य पाठशाला बाढ़ी प्रभावित दीदी बहिनिया व दादू बहन के उद्धार राहत तथा मानवीय सहयोग के लागि ऊ रकम प्रधानमंत्री देवी प्रकोप कोष मन हस्तांतरण कलक जनैलबा। पाठशाला विपद के ई घड़ी मन यी कठिन घड़ीमा प्रभावित क्षेत्रमा मलम लगाई ओ मानवीय सहायता पुगाई सकुन के छुट्टी प्रयासले कफे भारे अर्थ धरना हुईला कुर्से संग अपना हुकन सिफे सहयोगी हाथ हुक आगा बढ़ाई ओ विपदमा पर्लक नागरिक कुर्न साथ दिए समेत आह्वान कलबा गैलक बुधबार र सवाके भोटीकोशी लड्डेमा अलग बाढ़ी से टिमुरे लगायत के क्षेत्रमा भारी क्षति पुगेलबा बाढ़ी पाछा प्रभावित क्षेत्रमा नेपाली सेना नेपाल प्रहरी व सशस्त्र प्रहरी सहित के सुरक्षा निकाय उद्धार तथा खोजी कार्यमा परिचालित हुलबाट खोज खबरमा एक घरिक विश्राम विश्राम पाछै नेनीबाटी सुन्ती रही सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम
1: के तपाईलाई थाहा छ
2: एउटा प्लास्टिक झोला नष्ट हुन सयौं वर्ष लाग्छ फालिएको प्लास्टिकले नदी माटो वनस्पति जनावर र मानिसलाई असर गर्छ
1: हो र
2: हो त हामीले तिनै प्रदूषणमा हुर्किएका विषाक्त वस्तुहरू खान्छौ प्लास्टिकमा बोकेका झोल पदार्थ उपभोग गर्छौ
1: अनि
2: खानासँगै प्लास्टिक जन्य पदार्थ पेटमा जान लागेकाले क्यान्सर जस्ता प्राणघातक रोगहरू लाग्न थालेका छन् प्लास्टिक खानबाट जोगिन यसको विकल्प रोजौ
1: के छ त विकल्प
2: सामान बोक्दा कपडाको झोला प्रयोग गरौं पकाएको तथा झोल खानेकुराहरू प्लास्टिकबाट टाढे राखौं
1: विस्तारै गर्दा हुँदैन
2: हुँदैन टिकापुर नगरपालिकाले साउन 1 गतेबाट प्लास्टिकको झोला प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाइसकेको छ
1: प्लास्टिक हटाऊ पृथ्वी बचाऊ
2: प्लास्टिक हटाऊ पृथ्वी बचाऊ टिकापुर नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय सरसफाई शाखा टिकापुर कैलाली
3: बितल 25 वर्ष के लम्बा अनुभव रहल डाक्टर हेमन्त स्वार से टिकापुर में सत्कार पोलिक्लिनिक प्राली गुम्बा रोड गोलचोक लगह आपन भवन से सेवा देती रहल सक्कू बेरम हेन जानकारी कराइए सत्कार पोलिक्लिनिक में बिहान 7 बजे से संध्या 7 बजे सम मेर मेरिक रोग के उपचार तथा स्वास्थ्य परामर्श देना हुईलक मारा बेरम्हे उक्र संपर्क कैके उपचार सेवा लेह अनुरोध करती सत्कार पोलिक्लिनिक से दे जैना सेवा ओपीडी सेवा डिजिटल वीडियो एक्सरे ईसीजी सेवा डिजिटल अत्याधुनिक भारी एक्सरे सेवा नियमित ऑटो एनालाइजर से सक्कू रगत जांच फार्मेसी प्रयोगशाला सेवा हाट जोड़नी सेवा टूटल हाट जोड़नी में प्लास्टर सेवा ईएनटी सेवा सुरक्षित मातृत्व सेवा गर्भवती जांच सेवा यौन रोग के परामर्श तथा उपचार सेवा संग तालीम पायल स्वास्थ्य कर्मी से क्षय रोग तथा कुष्ठ रोग संबंधी सेवा फेले जाए संपर्क सत्कार पोलिक्लिनिक प्राली गुम्बा रोड गोलचोक लगह टीकापुर कैलाली फोन नंबर 091-560-095 ओ मोबाइल नंबर 98-48-42-73-59
0: प्रधानमन्त्री वारेन्द्र शाह नुवाकोट सदरमुकाम विदुर आसपासकै क्षेत्र निरीक्षण गर्न काठमाडौँ घुमलबाट भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री सुनिल लामसाल उहाँकै टीम उहाँ सेनाकै ब्यारेकमा पुगलबा सरकारी स्रोतकै अनुसार बिहिबार प्रधानमन्त्री नुवाकोट ऐना कार्यक्रम नै रह तर अन्तिम समयमा प्रधानमन्त्री बालेन स्वयं नुवाकोट जाक बाढ़ी प्रभावितकै हाल खबर बुझ्न विचार गर्न रह वाकरपा छ उहाँकै भ्रमण तैकै गिलखो नुवाकोट पुगन उहाँ विभिन्न क्षेत्रकै बाढ़ी पीड़ित ओ स्थानीय घाइते हुन भेटलबाट उहाँ काठमाडौँ घुम्लसेफे भौतिक मन्त्री लामसाल नुवाकोट मनबाट नेपाली सेना उद्धार ओ खोजबिन मन हुइटिरलक प्रगति बारे मन्त्री लामसाल अवगत करागिल्बा शीघ्र प्रतिकारे ओ उद्धार के लाग थप कोशिश गर मन्त्री लामसाल निर्देशन देलबाट वस्तक संचार मन्त्री विक्रम तिमिल सिन्हा काले बुधबार ठेसे नुवाकोट के विभिन्न क्षेत्रमा निरीक्षणमाबाट संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उद्यान मन्त्रालय गोसाईकुण्ड पुगलक आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक हुकन धुन्चेतर्फके नियमित मार्ग प्रयोग नै गर सचेत करैलबा मन्त्रालयकै और सूचना जारी निहुलसम्म गोसाईकुण्ड तुमचेश्वर काठमाडौँ हुइटी वैकल्पिक मार्गसे घुमसेकना जनैलबा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय गोसाईकुण्डमा पुग्लक आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक हन धुन्चे उहरके नियमित मार्ग प्रयोग नै गर सचेत करैलख मन्त्रालयके अनुसार गोसाईकुण्ड तुमचेश्वर काठमाडौँ हुइटी वैकल्पिक मार्गसे घुमसेकना जनैलबा मन्त्रालय और सूचना जारी निहुलसम्म धुन्चे उहरके नियमित मार्ग प्रयोग निकर कैगिल खो सुरक्षित यात्राके लागि वैकल्पिक मार्ग प्रयोग गर सेक्जिना जनैलवा। परराष्ट्र मन्त्री शिशिर खनाल हन बेलायतके विदेश राष्ट्रमण्डल तथा विकास मामिला मन्त्री मिली ब्यान से बिहीबार टेलिफोन कर्लबाट टेलिफोन वार्ताके क्रममा विदेश मन्त्री मिली ब्यान बुधबार ऐलक विनाशकारी बाढ़ीके कारण हुइलक धनजनके क्षति प्रति गहिर दुःख व्यक्त गर्दै शोक सन्तप्त परिवारप्रति संवेदना प्रकट गर्नबाट उहाँ विपदके यी घड़ीमा कठिन घड़ीमा बेलायत सरकार र जनताके नेपाल तथा नेपाली जनताप्रति एकबद्धता रहलक बटुलबाट उहाँ बाढ़ीसे उत्पन्न परिस्थितिसे जुड़ नेपालमा सहयोग गर्न बेलायती सरकार दीर्घ समर्थन गर्लक बटुटी जारी खोज तथा उद्धार कार्य बारे जानकारी लेलबाट संग बाढ़ी पाछ सम्पर्क विहीन रहलक बेलायती नागरिकके खोजी तथा उद्धार प्रयास बारे फेरि उहाँ चासो धर्लबाट उह अवसरमा परराष्ट्र मन्त्री खनाल नेपाल सरकार संचालन कर्ती र खोज तथा उद्धार कार्य बारे जानकारी गरे यति कठिन परिस्थितिमा नेपालमा सहयोग गर्न बेलायती सरकारको तत्परताप्रति धन्यवाद व्यक्त गर्नबाट वस्तकन परराष्ट्र मन्त्री शिशिर खनाल ओ बंगलादेशके परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर खलिलुर रहमान बीच बिहीबार टेलिफोन वार्ता हुइल्बा। टेलिफोन वार्ताके क्रममा बंगलादेशके परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर रहमान नेपाल हन सहयोग गर तयार रहलक बटुइलक हुइट दुई मन्त्री बीच नेपाल मन बुधबार हुइलक विपद पाछ जारी खोज तथा उद्धार राहतके कार्यके विषयमा न करगिलक परराष्ट्र मन्त्रालयसे जनागिल्बा। ऊ अवसरमा परराष्ट्र मन्त्री खनाल नेपाल आवश्यक सहयोग गर्न प्रस्ताव गर्लक मन बंगलादेश सरकारप्रति धन्यवाद व्यक्त गर्नबाट मन्त्री खनाल आवश्यक पना सहयोगके विषयमा नेपाल बंगलादेशसे हलि समन्वय कायम धर्ना बटुइलबाट। खोज खबरमा फेरफे विश्राम पाछै निनीबाटी सुन्तिरहे सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएम।
4: घर त जेनतेन लगाइयो, अब झ्याल ढोकाको लागि काठ कहाँ पाउने होला? काठ पनि सुन जस्तो महँगो, के गर्ने के नगर्ने?
5: त्यसको लागि के चिन्ता गर्नुहुन्छ भाइ? काठ भन्दा सस्तो देखिनामा पनि राम्रो आल्मोनियमको झ्याल ढोका बनाउनुहोस् न।
4: ए हो त, कहाँ पाइने रहेछ दिदी आल्मोनियमको झ्याल ढोका?
5: कहाँ हुनु भाइ, टिकापुरमा जमरापारी छ नि मिलन आल्मोनियम ग्लास हाउस, त्यही जानु होला नि।
4: अब त म ढुक्क।
6: मिलन आल्मोनियम एन्ड ग्लास हाउस जमरापारी टिकापुर कैलाली, प्रोप्राइटर मोहनदास भाट,
5: मोबाइल नम्बर 9848513426। जमरापारी टिकापुर कैलाली।
7: नेपालगंज मेडिकल कलेजमा कार्यरत वरिष्ठ यौन रोग मानसिक नशा एवं लागू औषध कन्सल्टेन्ट न्यूरो साइकोट्रिक डाक्टर आइनोडिन बागवान
8: भडौ 20 गते शनिबारका दिन
9: आरोग्य मेडिकल सेन्टर एन्ड क्लिनिक टिकापुरमा आउँदै हुनुहुन्छ। त्यसैले यौन रोग मानसिक तथा नशा एवं लागू औषध सम्बन्धी समस्या भएका बिरामीहरूले सम्पर्क गर्नुहोला।
7: लामो समयसम्म टाउको दुख्ने, बडी रिसाउने, झिजो मान्ने, बरबराउने, अमिलो व्यवहार गर्ने, कामकाजमा मन नलगाउने, बसेर टुलाउने, भोक नलाग्ने, निन्द्रा नलाग्ने, दुब्लाउँदै जाने, धेरै रक्सी खाने, लागू पदार्थ सेवन गर्ने,
9: त्यस्तै बच्चा तथा वृद्ध ओछ्यानमा पिसाब गर्ने, स्मरण शक्तिको कमी तथा पढाइमा कमजोरी, छारे रोग, मिर्गी र बेला बेलामा बेहोस हुने समस्या, नकारात्मक सोचाइ आउने, यौन सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्या भएका बिरामीहरूले अग्रिम नाम दर्ता गराउनु होला।
8: डाक्टर आउने दिन यही भडौ 20 गते शनिबार।
10: डाक्टर भेट्ने समय बिहान 8 बजेदेखि 12 बजेसम्म। बिरामी जाँच गर्ने स्थान आरोग्य मेडिकल सेन्टर एन्ड क्लिनिक अस्पताल रोड टिकापुर। टाढाका बिरामीले फोन मार्फत नाम दर्ता गर्न सक्नेछ। याद गर्नुहोस्, आरोग्य मेडिकल टिकापुरमा अबदेखि भिडियो एक्सरे सेवा उपलब्ध छ। सम्पर्क फोन नम्बर 9868800008 र 9825637772।
0: खोज खबरमा फेरफे स्वागत बा। सूचना तथा संचार मन्त्रालय रसुवा, नुवाकोट र धादिङ लगायतके बाढ़ी प्रभावित क्षेत्रमा विपदके समयमा संवेदनशील सूचना, तस्विर तथा भिडियो प्रसारण नै गर संचार माध्यम हो आम नागरिक हुकन आग्रह गर्नबा। मन्त्रालय आज अपील जारी गर्दै विपदके कारण उत्पन्न विषम परिस्थितिमा संचार माध्यम हो सामाजिक सञ्जालसे प्रवाह हुन सूचना लेखन उद्धार राहत तथा जन मानसमा गम्भीर प्रभाव परसेक्ना जनैलबा। मन्त्रालय विपत्से हुइलक क्षति उद्धार तथा राहत सम्बन्धी समाचार प्रकाशन ओ प्रसारण करबेर गृह मन्त्रालय जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुरक्षा निकाय तथा स्थानीय विपद व्यवस्थापन समिति से प्राप्त आधिकारिक सूचना हाकल आधार बनाइ आग्रह कलबा। वस्तकन अपुग कपोकल्पित ओ कृत्रिम बुद्धिमत्ता के सिर्जित भ्रामक सूचना तथा सामग्री के प्रचार प्रसार नै गर ओ सामाजिक सञ्जाल मा अहिलेक सामग्री के सत्यता पुष्टि कर्क कलहक सम्प्रेषण गर मन्त्रालय अनुरोध गर्लबा। मन्त्रालय सामाजिक सञ्जाल मा विपद के समय मा भए ओ विचलन बढ़ैना तथा पीड़ित हन थप पीड़ा देना खालके तस्वीर भिडियो वा विवरण पोस्ट तथा रिपोर्ट नै गर फे आग्रह कलबा। विपद के समय मा जिम्मेवार सूचना सम्प्रेषण कैकन उद्धार तथा राहत काम मन सहयोग पुगाए संचार माध्यम संचार गृह आम संचार कर्मी तथा सामाजिक सञ्जाल सञ्जाल प्रयोगकर्ता हन मन्त्रालय विशेष अपील गर्लबा। चीन जलस्रोत मन्त्रालय नेपाल मन छोछेन खोलवा व पुरेपु ट्याङसो लद्देक संगमन भारे प्राकृतिक बाण्ड सहित के ताल बन्लको ऐना तीन दिन मन फुट्ना जोखिम उच्च रहलक जनैलबा। बिहिबार बिहानसम्म तालमन करिब 20 लाख घनमीटर पानी जम्मा हुइसकलक ओ ऐना तीन दिन मन थप 30 लाख घनमीटर पानी जम्मा हुइसक्ना अनुमान करगिलबा। चीन ताल के अवस्था लगघसे निगरानी करती रहलबा। ओ सम्भावित जोखिम ध्यानमा धरती उद्धार तथा राहत काम मन सहयोग पुगाई तयारी करती रहलबा। नेपालमा ऐलक विनाशकारी बाढ़ी ओ पहिरो पास दुई लड्डेक संगम स्थल मन भारे प्राकृतिक बाण्ड सहित के ताल बनलको ऐना तीन दिनमा याकर फुट्ना जोखिम रहलक ओरसे चीन के जलस्रोत मन्त्रालय से जनागिलबा। चीन के केन्द्रीय टेलिफोन सीसीटीवी के अनुसार नेपालमा छेछन खोल्वा ओ पुरेपो ट्याङसापो लद्याके संगम लगघ भारे ब्यारियर लेक बनलबा। बिहिबार बिहानसम्म ऊ तालमन करिब 20 लाख घनमीटर पानी जम्मा हो सेकलक ओ पानी तालसे बाहेर समेत जाई लगलक जनैलबा। मन्त्रालय के अनुसार ऐना तीन दिनसम्म थप करिब 30 लाख घनमीटर पानी ऊ तालमा जम्मा हुन अनुमान गर्लबा। पानी के मात्रा निरन्तर बहर्ती गैलसे प्राकृतिक बाण्ड भटक्कन अचानक भारे बाढ़ी आइसेकना हुइलक ओरसे ताल फुट्ना जोखिम उच्च रहलक चेतावनी देलबा। चीन के जलस्रोत मन्त्रालय ताल के अवस्था लगघसे निगरानी करती रहलक जनैलबा। सम्भावित रूपमा प्राकृतिक बाण्ड फुटलमन बाढ़ी के बहाव कहोर ओ कतरा तीव्रमन पुगसेकी कना आकलन फे बाढ़ी सम्बन्धी विभिन्न सिमुलेशन तथा विश्लेषण समेत हुइटी रहलबा। सम्भावित जोखिममा ध्यानमा धरती आकस्मिक उद्धार तथा राहत काम मन सहयोग पुगाई आवश्यक तयारी हुइटी रहलक मन्त्रालय जनैलबा। यो समाचार के संग खोज खबर औराइल अन्तिममा जैति खबर के मुख्य शीर्षक फेरसे। बाढ़ी के कारण प्रभावित 336 जना के हवाई उद्धार। बाढ़ी पीड़ित के लाग विभिन्न ठाउं से सहयोग राहत रकम संकलन हुई। बाढ़ी प्रभावित विदुर से काठमाडौं प्रधानमंत्री बारेन्द्र शाह फिर्ता। भौतिक मंत्री लामसाल नुआकोट को परराष्ट्र मंत्री खनालो बेलायती समकक्षी मिली बैंड बीच टेलीफोन वार्ता। लिता आबकला थारू भाषा खोज खबर अत्र 6 बजे खोज खबर सुन सेकबी। अब खोज खबर से प्राविधिक मित्र आकाश चौधरी धन्यवाद दिती। मैं गीता फी बिदा हुई सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम सुनती रवि राम राम।
11: हिन्दू महिलाहरूको महान चाड़ हरितालिका तीज 2083 सालको पावन अवसरमा सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ तथा दिदी बहिनीहरूमा हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दै लक्ष्मी आभूषण भण्डारमा छड्के तिलहरी, माइली तिलहरी, रामलीला झुम्का, पिजडा झुम्का, बाला, औठी, पेण्डल, चन्द्रमा र अर्डर गरे अनुसार सुन चाँदीका गरगहनाहरू सुपथ मूल्यमा बनाइन्छ। एक पटक सेवा गर्ने मौका अवश्य दिनुहोला। लक्ष्मी आभूषण भण्डार, सिद्धार्थ चोक, टिकापुर, कैलाली। संचालक प्रकाश भण्डारी। सम्पर्क नम्बर 9848531595।
8: टिकापुर अस्पतालमा छाला तथा यौन रोग विशेषज्ञ डाक्टर आउने बारेको सूचना। टिकापुर अस्पतालमा छाला तथा यौन रोग विशेषज्ञ डाक्टर प्रकृति बराल हरेक हप्ताको सोमबार र बिहिबार बिरामी जाँच गर्न आउनुहुने भएकोले छाला तथा यौन रोग सम्बन्धी समस्या भएका बिरामीहरूले विशेषज्ञ सेवा लिन आउन हार्दिक अनुरोध गरिन्छ। टिकापुर अस्पताल, टिकापुर, कैलाली।
12: महिलाहरूको महान पर्व हरितालिका तीज 2083 सालको पावन अवसरमा सम्पूर्ण ग्राहक वर्ग, नेपाली दाजुभाइ तथा दिदी बहिनीहरूमा हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दै इन्द्रेणी ज्वेलर्समा माइली तिलहरी, छटके तिलहरी, रामलीला झाला, पिजडा झुम्का, बाला, एक आनामा एक जोडी चुरा, बबी औठी, बेरुवा औठी, पेन्डल, एकदेखि चार आनासम्म कनौगेडी हारहरू, चन्द्रमा, मोटी चन्द्रमा र अर्डर अनुसार सुन चाँदीका गरगहना बिना रसायनका बनाइनुका साथै खरिद बिक्री पनि गरिन्छ।
11: इन्द्रेणी ज्वेलर्स, बलभद्र चौक, टिकापुर, कैलाली। संचालक रणबहादुर सुनार। सम्पर्क नम्बर 98484019।
12: हिन्दू महिलाहरूको महान पर्व हरितालिका तीज 2083 सालको पावन अवसरमा सम्पूर्ण ग्राहक वर्ग, नेपाली दाजुभाइ तथा दिदी बहिनीहरूमा हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दै आरती ब्युटी एण्ड कस्मेटिकमा तीजको अवसरमा सौन्दर्य र श्रृंगारको लागि विभिन्न ब्राण्डका कस्मेटिक सामग्री पाइनुका साथै थारू गरगहना पाइन्छ र ब्युटी पार्लरको सुविधा समेत रहेको जानकारी गराइन्छ।
8: सञ्चालक आरती चौधरी। सम्पर्क नम्बर 98624070483।

0: आई हो बड्डो घर कहिया सिर्जैब पाछा से शुरू करल मने घर सिजार सेकल
1: अरे का करूरी बुढ़िया कठुआ खोजत खोजत परेशान हो गिल बाटू मिलबो नी करत का कहना हो का
0: मिस्तरान बर्जन हो का ना घर हेरो ना पट्टा सुगुर बनेला बाट आलमोनियम के मुआ का द्वार लगा का टूफे ओस्ट बनी हो ना वट्र फे पटानी हुई कि गुंगुआ बुरो हो ना कबू कहूँ घूम जाए तो था पाए
2: यूपीवीसी ब्रांड के मौका द्वार पार्टीशन स्टील की रेलिंग आगे पानियों काम से नहीं बिगड़ना खोले बेरो बंद करे बेर आवाज नहीं ना विशेषता हुई मौका द्वार पैना के संगे कठुआ के चौखट में अल्मोनियम के पल्ला हो द्वार फे लगा जाए
1: मिलन अल्मोनियम एंड ग्लास हाउस जमरा के उपार टीकापुर कैलाली प्रोप्राइटर मोहन राज भाट मोबाइल नंबर 9848513426।

0: कतै भूख छे
1: कतै बाढी
2: कतै पहिरो
0: जलवायु परिवर्तनले मानव जीवनमा चोट पार्छ गहिरो
3: त्यसैले वृक्षारोपण गरौं जंगल बचाऊ भूक्षयबाट जमिन जोगाऊ
0: सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम द्वारा जनहितमा जारी सन्देश
4: घर त जेनतेन लगाइयो अब झ्याल ढोकाको लागि काठ कहाँ पाउने होला काठ पनि सुन जस्तो महँगो के गर्ने के नगर्ने
5: त्यसको लागि के चिन्ता गर्नुहुन्छ भाइ काठ भन्दा सस्तो देखिनामा पनि राम्रो अल्मुनियमको झ्याल ढोका बनाउनुहोस् न
4: ए हो त कहाँ पाइने रहेछ दिदी अल्मुनियमको झ्याल ढोका
5: कहाँ हुनु भाइ टिकापुरमा जमरापारी छ नि मिलन अल्मुनियम ग्लास हाउस त्यही जानु होला नि
4: अब त म ढुक्क
6: मिलन अल्मुनियम एन्ड ग्लास हाउस जमरापारी टिकापुर कैलाली प्रोप्राइटर मोहनदास भाट
5: मोबाइल नम्बर 9848513426 जमरापारी टिकापुर कैलाली
7: बिटल 25 वर्ष के लम्बा अनुभव रहल डाक्टर हेमन्त स्वार्से टिकापुरमा सत्कार पोलिक्लिनिक प्राली गुम्बा रोड गोलचोक लग आपन भवन से सेवा देती रहल सक्कु बेरम हेन जानकारी कराइटिए सत्कार पोलिक्लिनिकमा बिहान 7 बजे से संध्या 7 बजे सम मेर मेरिक रोग के उपचार तथा स्वास्थ्य परामर्श देना हुईलक मार बेरम्हे उक्रा संपर्क कैके उपचार सेवा लिह अनुरोध करती सत्कार पोलिक्लिनिक से दे जैना सेवा ओपीडी सेवा डिजिटल वीडियो एक्सरे ईसीजी सेवा डिजिटल अत्याधुनिक भारी एक्सरे सेवा नियमित ऑटो एनालाइजर से सक्कु रगत जांच फार्मेसी प्रयोगशाला सेवा हाट जोड़नी सेवा टूटल हाट जोड़नी में प्लास्टर सेवा ईएनटी सेवा सुरक्षित मातृत्व सेवा गर्भवती जांच सेवा यौन रोग के परामर्श तथा उपचार सेवा संग तालीम पायल स्वास्थ्य कर्मी से क्षय रोग तथा कुष्ठ रोग संबंधी सेवा फेले जाए सम्पर्क सत्कार पोलिक्लिनिक प्राली गुम्बा रोड गोलचोक लग टिकापुर कैलाली फोन नम्बर 0915600595 ओ मोबाइल नम्बर 9842423059

विजापुर अस्पताल में छाला तथा यौन रोग विशेषज्ञ डाक्टर आने बारे को सूचना। टीकापुर अस्पताल में छाला तथा यौन रोग विशेषज्ञ डाक्टर प्रकृति बराल हरेक हप्ता को सोमवार बिहीबार बिरामी जांच गर्न आउनुहुने भएकोले छाला तथा यौन रोग संबंधी समस्या भएका बिरामीहरूले विशेषज्ञ सेवा लिन आउन हार्दिक अनुरोध गरिन्छ। टीकापुर अस्पताल, टीकापुर, कैलाली।